0: हर हर शंकर जय शिव शंकर भूषण वल्लभ जय महेश्वर
1: अस्तुगुरुल्लाह अल्लाहु अकबर
0: हर हर हर शंकर जय शिव शंकर भूषण वल्लभ जय महेश्वर
1: अस्तुगुरुल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाह अल्लाह
0: हरे हरे हरे हरे
1: अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह
0: हरे हरे हरे हरे
1: अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह
0: हरे हरे
1: अल्लाह अल्लाह
0: हरे हरे
1: अल्लाह अल्लाह
0: हरे हरे
1: हरे हरे
0: अल्लाह अल्लाह
1: हरे हरे
0: अल्लाह अल्लाह
1: हरे हरे
0: अल्लाह अल्लाह
1: हरे हरे
0: अल्लाह अल्लाह